0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99%

0: of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
1: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
0: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
1: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
0: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: क्या आप भी ट्रैफिक, स्ट्रेस और वही डेली रूटीन में फंसे हैं?
4: चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका. हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस. और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज. कॉल टुडे एट 705-378-2210. 705-378-2210.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटबिको, नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद बचत। विजिट asiagolding.com।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस, साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स It deserves.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप भी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका। हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस। और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210।
0: आप सुन रहे CMR at 9, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 11 AM। स्टे ट्यून्ड।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, ए टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
3: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: क्या अभी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो सिटी जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रैंड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस। और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us tours around the universe. www.cmr.fm.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: Listen to her around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
4: Oh-ho!

0: आप भी ट्रैफिक स्ट्रेस से वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो सिटी जस्ट अंडर 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे, ग्रांड पार्टी रिसॉर्ट नियर पेरी साउथ मस्कोका। हर सीजन का परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीचेस, इंडोर स्विमिंग पूल और कोजी सुंदर होटल रूम्स एंड कॉटेजेस। और खाना स्पेशली क्राफ्टेड है बाय आवर ब्रिलियंट इंडियन शेफ इन अ स्पेशल रेस्टोरेंट विद यम्मी क्विजीज। कॉल टुडे एट 705-378-2210, 705-378-2210।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30। आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है। प्लीज डोंट वॉक इन। 905-206-1008।

0: इस सेगमेंट को ध्यान से सुने। बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। मोहम्मद साहब आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सनी जी, हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी। जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है। देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो। देखिए, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही।
2: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानु ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: जोशी।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बात करते हैं पेशेंस की। पेशेंस इज द एबिलिटी टू स्टे काम एंड कंपोज्ड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। लाइफ डजंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड, बट पेशेंस हेल्प्स अस हैंडल चैलेंजेस ग्रेसफुली। इट्स ईजी टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, but waiting with a positive attitude leads to better results. Patience is key in relationships, studies and work. It teaches us to listen, understand others and make wise decisions. When faced with problems, taking a deep breath and thinking before reacting can prevent regrets. Patience leads to peace and success. धैर्य हमें बहुत आगे तक जिंदगी में लेकर जाता है, क्योंकि अक्सर जिंदगी में हम चीजों को प्लान नहीं करते, बस जिंदगी हो जाती है, जिंदगी कोई ना कोई मोड़ ले लेती है। लेकिन जब जिंदगी में चैलेंजेस आती हैं और आप धैर्य से उन्हें फेस करते हैं, तब जीत आपकी होती है। जिंदगी में बहुत इजी होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। चाहे वो हमारे रिश्ते हों, पढ़ाई लिखाई हो या काम हो, पेशेंस से हम लोगों को सुन सकते हैं, लोगों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अंत में बेहतर डिसीजंस बना सकते हैं। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक गहरा सा सांस ले एंड थिंक बिफोर यू रिएक्ट। स्टे ब्लेस्ड लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमिटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमिटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finlay Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन क्रिमिटोरियम, एजैक्स क्रिमिटोरियम से हरजिंदर जी हमारे साथ हैं। हर महीने जब हरजिंदर जी आते हैं, वी टॉक अबाउट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। एंड क्रिमिटोरियम्स आम तौर पे ऐसा होता है कि यू नो वी डोंट वांट टू डिस्कस। हमें अक्सर जो है हम मृत्यु को लेकर, किसी का निधन हो जाता है, हम उन चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहते। बट ये परम सत्य है और इससे बड़ी सच्चाई कोई है नहीं। सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तो पहली बात है, ब्रैम्पटन क्रिमिटोरियम, एजैक्स क्रिमिटोरियम आर डूइंग ग्रेट वर्क इन टाइम्स व्हेन वी रियली नीड दैट शोल्डर, व्हेन वी नीड यू नो अ क्रिमिटोरियम टू गिव अस दैट सपोर्ट। क्योंकि एक परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होती है ये परिवार को ही पता होता है। एंड ब्रैम्पटन क्रिमिटोरियम, एजैक्स यू नो आर रियली देयर, कंधे से कंधा मिलाकर कम्युनिटी के साथ इतने सालों से दे आर वर्किंग। एंड 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन एंड एजैक्स से भी सर्व करते हैं। हरजिंदर जी, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू जी। थैंक यू सनी जी। आपके सभी लिसनर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार
0: जी।
1: सत श्री अकाल आदाब
0: जी। आपको भी।
1: आपने थैंक यू, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे एक परिवार की तरह उस जो विदाइगी होती है, अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, उसके लिए पूरी तरह से हमारा सारा स्टाफ जो है एक परिवार की तरह खड़ा होता है उस टाइम पे। क्योंकि वो इतना भावुक टाइम होता है कि परिवार वालों को कुछ सूझता नहीं है, और उस टाइम ये हेल्प बड़ी जरूरी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: सो इसके साथ मैं एक बात करना चाहूंगा प्री प्लानिंग की, पूर्व योजना की
0: जी।
1: उसमें ऐसे है कि आज की डेट के जो प्राइजेस हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिससे फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ती है, से डाउन द लाइन 20 इयर्स 30 इयर्स में, तो सभी समझदार लोग समझ सकते हैं कि अगले 20-30 साल में प्राइजेस कहाँ होंगे। बिकॉज द लास्ट 10 इयर्स हिस्ट्री शोज अस कि ये ऑलमोस्ट डबल्ड हैं प्राइजेस, ऑलमोस्ट डबल्ड। तो अगले सालों में अंदाजा कोई भी लगा सकता है। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आज की प्राइजेस लॉक हो जाती हैं। मेजर कॉस्ट होती है विजिटेशन एंड कैस्केट
0: जी।
1: तो ये दोनों प्राइजेस लॉक हो गई, तो जो एक बोझ है, फाइनेंशियल बर्डन है, देखो कोई भी समवन पासेस अवे इन द फैमिली, द मेन बर्डन इज फाइनेंशियल एंड द अदर इज इमोशनल बर्डन
0: जी।
1: तो इमोशनल बर्डन तो फैमिली वाले मिलकर सभी साथ देते हैं, पर फाइनेंशियल बर्डन के लिए फैमिली को ही बेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर प्री प्लान कर लिया जाए तो आगे बढ़ने वाले जो प्राइजेस हैं उनसे जो है बचाव हो सकता है। सो एक ये एक बड़ा अच्छा मीठा सा डिसीजन भी है कि परिवार वालों को ये कह देना कि मैंने अपनी आखिरी जिम्मेवारी भी निभा ली है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: तो इसके लिए हमारे साथ किसी भी समय क्रेमेटोरियम में या कहीं आउटसाइड लोकेशन कॉफी शॉप पे मीटिंग की जा सकती है। नो ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी कॉस्ट ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपको सारी बात क्लियर कर दी जाएगी। और उसके बाद ये एक इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्यूटी है कि पैसा जो है क्रेमेटोरियम के पास जमा नहीं होता, दिस इज डिपॉजिटेड विद एन गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे ये ग्रो करता रहता है और जरूरत पड़ने पर क्रेमेटोरियम को डायरेक्ट मिल जाता है। उस टाइम फैमिली को कोई और अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, मींस इंश्योरेंस से क्लेम करने की वेट करना या कुछ ऐसी बात, ये डायरेक्ट पैसा अपने आप उस टाइम क्रेमेटोरियम के पास आ जाता है और फैमिली अपने लव्ड वंस की लाइफ को सेलिब्रेट कर सकती है, मैं ये कहना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है, एंड आई थिंक ये एग्जैक्टली जहां से मैंने शुरू किया था कि अक्सर ये वो वक्त होता है जहां पर हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वी आर एब्सोल्युटली शॉक में होती है परिवार, एंड ये प्री प्लानिंग जिसके बारे में दोस्तों बता रहे हैं हरजिंदर जी, ये प्री प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग टू हैपन जस्ट टुमारो, बट मे बी यू हैव ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्डर पेरेंट्स, एंड होने को कभी भी कोई चीज़ हो सकती है, उसके लिए अगर आप प्री प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा सा तैयार रहें तो ये सुकून होगा आपको उस ओवरवेलमिंग सिचुएशन में कि भाई ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम, एजैक्स क्रेमेटोरियम हमारे साथ हैं, उस वक्त पता नहीं इन्फ्लेशन के मद्देनज़र क्या हालात होंगे, उस वक्त कई बार हमें ये नहीं पता होता है हरजिंदर जी हमारे फाइनेंशियल हालात कैसे होंगे, यू नो वी जस्ट डोंट नो, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू गाइज आर ऑफरिंग। आपके जाने से पहले मैं क्विकली बर्लिंगटन वाले क्रेमेटोरियम के ऊपर भी जानना चाहूंगा कि इज दैट ऑपरेटिंग ऑलरेडी और हाउ लॉन्ग विल दैट टेक?
1: यस, वी आर वर्किंग एट एजैक्स एंड ब्रैम्पटन प्रेजेंटली और वी आर कमिंग अप एट बर्लिंगटन, हम आ रहे हैं बर्लिंगटन में भी बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर आई कैन से, और मैं एक इसके साथ एक जो ट्रेवल प्लान है उसके लिए भी एक मिनट लूंगा कि ट्रेवल प्लान प्रोटेक्शन प्लान है जो जर्नी बैक होम है, किसी की अकास्मिक डेथ हो जाती है, वो कहीं ट्रेवल पे गए हुए हैं, इंडिया गए हुए हैं, तो वहां से बॉडी लाने का खर्चा आज की डेट में इट इज अराउंड $8,000-$10,000।
0: बिल्कुल सही बात,
1: $595 वन टाइम लाइफ पेमेंट है
0: जी,
1: उससे वो पॉलिसी लेकर कोई भी सुकून से वर्ल्ड ओवर ग्लोब पे ट्रेवल कर सकता है और सारा जो पेपर वर्क है, कंसुलेट, लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी कवर्ड होंगी। देखो किस टाइम कहीं हम ऐसी कंट्री में गए हुए हैं जहां पे लैंग्वेज बैरियर है,
0: सही बात,
1: तो वो भी सारा जो अरेंजमेंट हम करेंगे वहां पे वहां का लैंग्वेज एक्सपर्ट ढूंढ के
0: जी,
1: वो पूरा सपोर्ट होगा फैमिली को।
0: बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया है, आई डोंट नो अगर इसका आपके पास राइट अवे जवाब होगा या नहीं होगा, हमारे कोई लिसनर है अशोक जी, बड़े रेगुलर लिसनर है हमारे, और उन्होंने पूछा है कि अगर कोई बॉडी को हॉस्पिटल को डोनेट करता है, आई डोंट नो किस तरह का प्रोसीडियर है उसका, मे बी
1: वो जो डोनेट करता है उसके लिए उस टाइम कंडीशंस पे होता है बॉडी की कि वो एक्सेप्ट करते हैं, इट्स वेरी गुड, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो राइट नाउ, मैं आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता, हो सकता है वो बॉडी ले लेते हो सकता है कि अगर ऑर्गन्स डोनेट किए गए हैं तो ऑर्गन्स रख के बाकी बॉडी जो है वो फैमिली को दे दी जाती है
0: जी, बिल्कुल,
1: जो And भी हॉस्पिटल से जहां भी क्रेमेटोरियम भेजी,
0: बिल्कुल। मैं यहां पे ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम का, एजैक्स क्रेमेटोरियम का नंबर भी शेयर कर देता हूं हमारे लिसनर्स के लिए, एंड हरजिंदर जी एंड हिज बहुत ही नॉलेजेबल टीम इज देयर टू address all the queries that you may have, 905-458-2222 for Brampton Crematorium, and Ajax Crematorium is 289-372-3000. Harjinder ji, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आते हैं हमें कुछ ना कुछ नई चीज बता के जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, आप इतने श्रोताओं से हमें मिलवाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए किसी भी समय नो ऑब्लिगेशन विदाउट एनी कॉस्ट मीटिंग कोई भी रख सकता है प्री प्लानिंग को पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए।
0: थैंक यू जी, अगेन नंबर 905-458-2222 ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम, हरजिंदर जी एंड हिज एंटायर टीम। हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ वंडरफुल डे।
1: थैंक
0: यू सर। 905-458-2222 इज द नंबर, एंड एक आपकी की दोस्तों रिक्वेस्ट है, मीत ब्रदर्स मोनाली ठाकुर की आवाज़ में बागी फिल्म का गीत था, लाइनअप कर दिया है, एंड क्रूज शिप पर हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कैनेडियंस जो हैंटा वायरस से प्रभावित हुए थे आर ऑल डूइंग फाइन नाउ, ये अपडेट सामने आई है, एंड एंजॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
3: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
2: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
2: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
3: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
2: 647-739-8710, license number M200-34504.
4: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
5: At Wayne's Auto Group, aap hum par rely kar sakte hain. For everything automotive, chahe ho daily commute ya weekend scape, hamara promise will always remain the same. Har journey ko banaye khas. Wayne's Auto Group, hamesha aapke saath. Over 1400 dedicated associates jo bolte hain aapki language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
6: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
7: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
6: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
8: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
9: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 9054573232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Kanda. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant.
10: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर। फ्रिज, ओवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा। अप्लायंस टू फिक्स, अभी कॉल करें हरविंदर 647-407-1470, 647-407-1470। आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रहे हमेशा फिट।
11: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779,
12: 647-760-2779. खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू हैं ना फरात के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे।
13: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
9: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ हैं। एंड अतीक भाई, पिछले हफ्ते दो हफ्ते से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। उसका प्राइस बड़ा जबरदस्त है, माउथ वाटरिंग है, एंड द प्रोजेक्ट इज इन बेलविल। एंड उस अमाउंट में एकड़ ऑफ लैंड की जब हम बात करते हैं, वो मतलब लिटरली इज अ ड्रीम। यू जस्ट डोंट गेट दैट काइंड ऑफ लैंड एंड दैट काइंड ऑफ प्राइस, बट दिस इज व्हाट अतीक भाई इज टेलिंग अस। एंड उसके साथ मुझे तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर देखने का मौका मिला, अबाउट एवरीथिंग, ऑल द पॉजिटिव्स दैट आर गोइंग इन एंड अराउंड दैट प्रोजेक्ट। एंड नंबर प्लीज नोट करें, 416-666-2745। एंड लेट मी एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली द बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंटायर थिंग, फिर उसके बाद द एक्सपर्ट हिमसेल्फ विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। मैं जो आज तक समझाऊं, जब जब अतीक भाई आते हैं कि एक लैंड खरीदी जाती है, उसे डेवलप किया जाता है, उसकी जोनिंग बदली जाती है, जो कि अतीक भाई और उनकी टीम ये काम करते हैं। यू बिकम अ पार्टनर एंड ओनर ऑफ दैट लैंड, योर नेम कम्स ऑन द टाइटल ऑफ द लैंड, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय योर लॉयर। सो दिस इज व्हाट इन ब्रीफ आई कैन से। बाकी अतीक भाई का काम है आपको समझाना बताना। 416-666-2745। अतीक भाई, आपका स्वागत है।
14: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मैं यहाँ से आगे बताता हूँ लोगों को।
9: प्लीज,
14: डेवलपमेंट के 3 फेजेस होते हैं लिसनर्स। पहला होता है लैंड एक्विजिशन, दूसरा होता है लैंड कन्वर्जन या जिसको आप जोनिंग चेंजेस कहते हैं, एंड थर्ड फेज के अंदर आप सर्विसेज लाते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। शुरू के जो 2 काम है वो प्योर कैश के ऊपर होते हैं, क्योंकि आज की मार्केट में अगर आपने अपने ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस ले लिए, देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, क्योंकि प्रोजेक्ट होते होते आप डेट्स में इतना डूब जाएंगे कि आप बाहर नहीं आ पाएंगे। सो मेरा एक रूल ऑफ थंब है, व्हेन आई गो एंड बाय अ लैंड आई विल नॉट टेक एनी लोन और मॉर्गेजेस, वी बाय ऑन कैश, ताकि आपकी कोई क्या कहते हैं उसको, आप फिक्स कॉस्ट हर महीने की आपकी रनिंग कॉस्ट में नहीं जा रही होती, सारा का सारा डेवलपमेंट के अंदर वो पैसा लगता है, नंबर वन। नंबर टू, जिस लैंड को आपने जोन कराया, अप्रूव कराया, वो फ्यूचर में, एंड फ्यूचर मींस अबाउट 18 मंथ्स ऑफ टाइम, अपनी वैल्यू 40-50% इंक्रीज कर जाती है। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर आपको 40-50% कमाने हैं, तो अपनी उंगलियों को थोड़ी जहमत दें और ये नंबर डायल करें, 416-666-2745। कॉल कर दें, टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जी सनी भाई।
9: जी बिल्कुल, 416-666-2745। कई बार लिसनर ये सवाल पूछ लेते हैं तो मैं उनके बिहाफ पे आपको ये पूछ रहा हूं। फर्ज करिए कि मैंने I have $100,000 and I put in $100,000. Yeah, mere paas $200,000 hai. I put in the project. Let's say after 2 years, for whatever reason, mujhe wo paise wapas chahiye. How does that work? Does that even make sense? Jo main keh raha hoon, kyunki kai baar aisa hota hai ki banda kehta hai ki bhai, you've already put in so much of time, effort, money. You might as well go a little more because aapka जो रिटर्न है वो मच बेटर हो सकता है इन अनदर कपल मोर इयर्स।
14: तो ऐसा है सनी साहब, मुझे ये काम करते हुए रफली कोई 20-25 साल हो गए। मैंने अच्छे दिन, बुरे दिन, ओवरऑल एक हर तरह की मार्केट देख ली है, मेरे अंदर से वो डर नाम की चीज अब निकल चुकी है. मैं और मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है. सो एवरीबडी नोज कि मैं किस हद तक रिस्क ले सकता हूँ. मान लीजिए आप मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हैं. आप कहते हैं कि जी मैंने तो रिस्क लेना ही नहीं है. अगर लॉस का 1% भी चांस है तो मैं आना ही नहीं चाहता आपके साथ. नो प्रॉब्लम. तो जैसा मैंने कहा कि लैंड डेवलपमेंट 3 या 4 फेजेज में हो रही है, तो आपका जो वो 1 लाख और 2 लाख था वो आप बड़ा बड़ा शुरू में ही पेपर पे लिख देंगे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा. 1.5 से 2 साल में जब आपके पास लैंड की अप्रूवल आ जाए, जिसको कि हमारी लैंग्वेज में ड्राफ्ट प्लान और साइट प्लान अप्रूवल कहते हैं, जिस वक्त अप्रूवल आ गई, मैंने सनी साहब को उनका प्रिंसिपल और उनका प्रॉफिट दोनों दे देने, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या कोई और आपको रिप्लेस कर देगा और वो मेरे साथ आगे चलेगा. मुझे एक सेकंड और दीजिएगा, मैं आपको ये रीजन समझा दूं कि मैंने ये बात क्यों बोली थी. जब आप कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, और जाहिर है प्रोजेक्ट्स कभी 10 मिलियन कभी 20 मिलियन कभी 50 मिलियन के होते हैं, तो जाहिर है मैं और आप तो 50 मिलियन नहीं डाल रहे. हम तो छोटे इन्वेस्टर थे, हम सब ने 1-1, 2-2 लाख डाले हुए थे. तो उस स्टेज पे जाके आपको कंस्ट्रक्शन लोन लेना पड़ता है, और ये आप चेक भी करा सकते हैं. किसी से पूछेंगे वो यही कहेगा, अतीक साहब ने आपको बिल्कुल सही बताया था. कंस्ट्रक्शन लोन मुझे मिल जाता है मेरे अपने नाम की बेसिस पे, या यूं कह लीजिए कि कॉर्पोरेट गारंटी की बेसिस पे. लेकिन सनी साहब, अगर आप शायद ले रहे हो, चूंकि बैंक आपको नहीं जानता, आपके पास पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या पता वो आपसे पर्सनल गारंटी मांगे. ठीक है, मुझे क्या मालूम कि आप पर्सनल गारंटी के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे आज से आने वाले 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, या क्या पता आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए. आज आप पर्सनल गारंटी दे सकते हैं, मे बी 2 साल बाद नहीं दे पाएंगे, या उल्टा कर लीजिए. तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा कि आप कोई ऐसा पेपर साइन करें कि जिससे आपके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आए. अगर आपने शुरू में ही कह दिया कि जी मैं बिल्ड में नहीं जाऊंगा, सिर्फ डेवलपमेंट का पार्ट बनूंगा, बाय ऑल मींस, तो आप 18 मंथ 20 मंथ रहिए, अपने प्रॉफिट को 50% करिए और अपना पैसा लेके अलग हो जाइए.
15: जी, बड़ा सिंपल है. देखिए दोस्तों, कई बार चीज़ों को हम खुद कंफ्यूज कर लेते हैं, और क्योंकि हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी एजुकेशन नहीं होती या हमें आइडिया नहीं होता, एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग ओवर स्टफ जिसकी पहले ही हमारे पास आधी अधूरी क्या सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन है. मैं ये कहता हूं द बेस्ट थिंग इज कॉल अतीक खान साहब, दैट्स व्हाट ही इज देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. और किस तरह से अतीक भाई, और ही इज बिन डूइंग इट फॉर 26 ईयर्स, पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये कोई 2-3 साल की कहानी नहीं है. ये 2000 से सदर्न ओंटारियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं ऑन all levels, not different levels, on all levels of acquiring a land to seeing ki bhai final uska outcome kya hota hai, kya plan kiya jata hai, is done by him and his team. Aaj hi call karein 416-666-2745-416-666-2745. 416-666-2745. Atik bhai, bahut bahut shukriya.
14: Thank you so much, sir.
15: Thank you, brother. 416-666-2745 is the number. cholebature.ca par nahi gaye to kyun nahi gaye? Abhi ke abhi jaiye. 4 locations hai. 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga. Takeout, dine-in option sab mein available hai. And this is Delhi wale authentic Chole Bature at cholebature.ca. Pyara sa geet bhi ready hai. Brampton TV and Appliances Sultan ji bhi humare saath honge. Aate hain bahut hi jald wapas.

वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।

कम्युनिटी का जाना बजाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, 416-451-0040 और विजिट स्काई लेक इमिग्रेशन

0: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086। राज जोशी, नाम ही काफी।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लेक डेदा प्लांसी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ।
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी भी हमारे साथ हैं। राज जी, आपका स्वागत है।
8: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और फेलो लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
7: जी आपको।
8: सनी जी, कल के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। 20 फुट के 2-story रेयर यार्ड टाउन्स सिर्फ $20,000 साइनिंग, और लोकेशन है ब्रैम्पटन। साथ ही साथ बता दूं, ये 2-story के टाउन जो है 20 फुट के लॉट पर, रेयर यार्ड टाउन 867 से स्टार्टिंग है। लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही साथ इसमें जो डिपॉजिट स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही मैं कहूंगा वेल कैसे कह सकते हैं, वेल राउंडेड है कि आपको इनफ टाइम मिल रहा है इन 150 days टू मेक योर डाउन पेमेंट। क्लोजिंग जो है वो कमेंस हो रही है समर ऑफ 2027 में। इसमें कॉमन एलिमेंट, कॉमन एक्सपेंसेस जो है रफली अबाउट $198 पर मंथ है। टोटल अप्लायंस पैकेज जो है इसमें इंक्लूडेड है। और ऑफकोर्स सबसे कमाल की बात, इसमें ऑल्सो 30 फुट के और 36 फुट के डिटैच होम्स भी अवेलेबल हैं, अगर कोई भाई बहन डिटैच में इंटरेस्टेड हो। साइट प्लान, प्राइस लिस्ट, कोई भी डिटेल्स जो आप चाहते हैं आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो स्टार्टिंग प्राइस है वो मिड 750 से है। अगेन, कल इसका आप कह सकते हैं कि VIP इवेंट है, अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हो दे कैन कम अलोंग और वो विटनेस कर सकते हैं सारा कुछ। 2-story टाउन्स एक एक्सलेंट ऑफर है मुझे लगता है। कैसल मोर रोड और ब्रैमली रोड नॉर्थ से बहुत ही शॉर्ट ड्राइव पर ये मेफील्ड के इंटरसेक्शन पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्रैम्पटन में, हमें कॉल कर लें एंड रिजर्व योर नेम ऑन द लिस्ट। इसके अलावा सनी जी, बहुत सारी जबरदस्त प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर साउथर्न ओंटारियो अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी एरिया पर फोकस कर रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर लें। हमारे पास वहाँ किसी ना किसी बिल्डर के साथ बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम आपको डिटेल्स भी सेंड कर सकते हैं डिस्कशन के लिए भी। देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अगेन, ब्रुकलिन में टाउन स्टार्ट हो रहे हैं प्राइस फ्रॉम द 400 टू कार पार्किंग इंक्लूडेड है। अगर आप ब्रुकलिन के एरिया को प्रेफर करते हैं हमें कॉन्टैक्ट कर लें, अर्बन टाउन्स की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून।
7: थैंक यू राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर हमारे रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के राज जोशी जी। कॉल करें एंड ड्रीम होम की चाबियां बहुत जल्द आपके घर आपके हाथ में हो सकती हैं। इवन इफ यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स हैं हमारे लिसनर्स के लिए, खासकर राज जी लेकर आए, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। 6478661086 6478661086। जो नॉलेजबल रियल्टर होते हैं वो आपको, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, टॉप डॉलर्स दिलवाते हैं, और अगर आपने बाय करनी है तो बेस्ट प्राइस में आपकी निगोशिएशन करके ड्रीम होम की चाबियां आपके हाथ में रखेंगे राज जोशी। 6478661086। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज जी।
8: थैंक यू सर।
7: थैंक यू जी। 6478661086। बाहर का तापमान तकरीबन जो है, अगर हम देखें, राइट नाउ इज एट 26 डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स लाइक 27। एंड वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आते हैं बहुत ही जल्द वापस, फिर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी होंगे साथ। जिंदगी यू हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा, अपने साए से चौक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, रात भर बातें करते हैं तारे, रात काटे कोई किधर तन्हा, डूबने वाले पार जा उतरे, नक्शे पा अपने छोड़कर तन्हा, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, हमने दरवाजे तक तो देखा था दोस्त, हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर ना जाने गए किधर तन्हा, फिर ना जाने गए किधर तन्हा।
9: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
10: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
11: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
12: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। ब्रांटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रांटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM। ब्रांटन अप्लायंसेस .com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख। सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं। और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी। तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी। इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे। पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं। $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky कस्टमर कैन गेट इट 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी $1999 का। 905-450-2828 905-450-2828
0: ब्रांटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी। कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता। हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए

0: फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828 जी
1: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हुन टेंशन फ्री होके एंजॉय करो लाइफ नू। साडी हाई डेफिनेशन कैमरास ते इनोवेटिव स्मार्ट टेक्नोलॉजी नाल अपने घर जां कारोबार ते रखो निगाह 24 घंटे 7 दिन दुनिया दे किसे भी हिस्से तों इंटरनेट राहीं किसे भी डिवाइस ते। अपनी सेफ्टी ते सिक्योरिटी दा आप ख्याल रखो। वधेरी जानकारी लई कॉल पॉल सैगल 416-940-0624 और विजिट safetyandsecuritysolutions.ca। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।
7: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: Kya aap sun rahe hain?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स of Toronto this fine afternoon.
5: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? पतझड़ है कुछ, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी, सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी।

मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग। यहां किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ हिजर है। शौके विसाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है।

0: Harvey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
1: 40 सालों का विश्वास, सफर हर बार खास. स्टारलाइट ट्रेवल्स, आयटा एंटी कोक सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंसी, लेड बाय ट्रेवल एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी. विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड मेमोरेबल. चीपेस्ट एयर फेयर डील्स हो या ऑल इंक्लूसिव वेकेशंस, कस्टमाइज हॉलीडे पैकेजेस, वीजा असिस्टेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे. सपनों की डेस्टिनेशन हो या फैमिली वेकेशन, स्टारलाइट ट्रेवल बनाए हर सफर टेंशन फ्री और अनफॉरगेटेबल. स्टारलाइट ट्रेवल, सफर सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है. विजिट स्टारलाइट ट्रेवल्स, 7777 वेस्टर्न रोड, यूनिट 221 वॉन, और कॉल 416-745-0000.
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है. एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है.
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है. कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर.
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे. उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई. तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे. इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. एंड नो फी अंटिल विक्ट्री.
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट. डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ. सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले.
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046. दैट इज 416-937-5046.
6: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं, या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है. RESP, RRSP, ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं. कॉल कीजिए लवजोत कौर 416-877-8134. इट्स 416-877-8134.
7: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
8: साहब, सजना संवरना, बेहतर दिखाई देना, ये सब लोगों का, तमाम इंसानों का बुनियादी हक भी है, बहुत सों की ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है कि वो खूबसूरत और अच्छे दिखाई दें. लेकिन इसके लिए तरबियत का, तालीम का, किसी कोर्स का, फॉर्मल एजुकेशन का, फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना भी आजकल बहुत ज़रूरी है. बहुत सी ख़वातीनें घरों में बैठ के खुद ही मेकअप करती हैं और जब मेकअप करने के बाद जायज़ा लेती हैं चेहरे का, तो बहुत सी कमियां और खामियां दिखाई देती हैं. फिर उनका जी चाहता है कि काश कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन ले ली होती इसमें, ताकि मायूसी का सामना ना करना पड़ता. आज हम एक बहुत तजुर्बाकार और बहुत हुनरमंद और बहुत स्किलफुल मेकअप आर्टिस्ट से बात करेंगे. इनका काम माइक्रोनीडलिंग का भी है, लेकिन बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि ये मास्टर क्लासेस करवाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं मेकअप में. तो आज हम इनसे बात करेंगे. बहुत सी ख्वातीन जो रोड्स पे, घरों में, डिफरेंट एरियाज़ में हमें सुन रही हैं इस वक्त, इनकी बात ध्यान से, तवज्जो से, गौर से सुनिएगा. और हमारे मर्द हजरात इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं, वो इसलिए सुने कि इनकी कही गई बातें या इनकी दी गई इन्फॉर्मेशन लेडीज़ तक पहुंचाएं, वाइफ तक पहुंचाएं, ताकि वो इनके इस हुनर से इस्तेफादा हासिल कर सकें. ज्वाइन किया है नवीन जी ने. वेलकम करते हैं मैडम आपको.
9: जी, थैंक यू सो मच अमर जी.
8: सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेकअप सीख के करना और बिना सीखे करना, इन दोनों में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है. मैं आपको ये एग्जांपल दूंगी कि मैंने जैसे 25 साल पहले मेकअप कोर्स किया था और उससे तब से मैं मेकअप कर रही हूँ उसमें और क्लासेस भी दे रही थी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपग्रेड करना है. तो फिर मैंने खुद, हालांकि बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट इन सो मेनी इयर्स, मैंने एक रिफ्रेशर कोर्स किया. तो ये एक एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर नई टेक्निक्स, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और आपको अप टू डेट रहना है. सो अगर मैंने किया तो दैट मीन्स कि जिन लोगों को पता भी नहीं है मेकअप के बारे में ज़्यादा, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है सीखना प्रोडक्ट कौन सा कब लगना है. तो मैं मास्टर क्लास एक ऑफर कर रही हूँ. आपको वन डे का कोर्स है, उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कितनी लेयर्स ऑफ मेकअप लगती हैं. इट्स नॉट जस्ट के फाउंडेशन लगाई, ब्लश ऑन लगाया और चले गए. जब आप आएंगी, सीखेंगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप पार्टी मेकअप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, आप ब्राइडल शुरू कर सकती हैं, घर बैठे आप ये पैसे कमा सकती हैं. बिकॉज ये एक इंडस्ट्री है आमिर जी जो कभी नीचे नहीं जाएगी.
8: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रही
9: हैं. ये आगे ही जानी है, शादियां होनी हैं, बर्थडेज होनी है, फंक्शंस होने हैं. सो एवरीवन नीड्स दैट. हर कोई कोर्स नहीं कर सकता, हर किसी के हाथ में स्किल भी नहीं होता.
8: ठीक कह रही हैं.
9: जिसका इंटरेस्ट है, जिनको थोड़ा आइडिया है, वो पॉलिश करें स्किल्स. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. एक दिन आपको हम देंगे मास्टर क्लास का, फिर आपका एक टेस्ट होगा ताकि आपने कितना सीखा है, और फिर हम आपको कुछ सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में भी बताएंगे जो कि आपके चेहरे पे क्या लगेगा, वो बिल्कुल फ्री होगा.
8: बिल्कुल सही है. यहाँ नंबर है नवीन जी का, अगर आप मेकअप की स्किल्स सीखना चाहती हैं तो ये नंबर मिलाएं. मास्टर क्लास में बेसिक मेकअप स्किल्स सीखिए. 6479608097. अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कंप्लीशन का, ये नंबर मिलाएंगे आप 6479608097. सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये आपका कोर्स मेकअप का किन लोगों के लिए है?
9: सबके लिए है जी, कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर. ऑफकोर्स हूएवर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. आप, और इसकी अच्छी बात यह है कि आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है या नहीं भी है तो मोबाइल सर्विसेज दे रही हैं लेडीज आजकल. आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आप जाके किसी के घर में, दो लोग हैं, चार लोग हैं, पार्टी मेकअप कराना चाहते हैं, यू कैन गो एंड जस्ट डू मेकअप देयर. अपना मेकअप खरीदना है आपने. सो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने ऐसे लोगों को भी सिखाया हुआ जिनको कुछ नहीं पता था मेकअप के बारे में.
8: अच्छा.
9: बट सिखाने का, पढ़ाने का मतलब ही है कि आप ऐसी चीज सिखाएं जो उनको नहीं आती पहले से.
8: मिसाल के तौर पर मास्टर क्लास में कौन कौन सी चीजें सिखाएंगे आप, कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे?
9: पूरा मेकअप स्टार्टिंग फ्रॉम अपनी जो जैसे प्राइमर यूज करते हैं, कलर करेक्टर है, लोगों को कलर करेक्टर का नहीं पता कि वो कौन से कलर पे कौन सा कलर करेक्टर यूज होना है. देर आर सो मेनी कलर करेक्टर्स, उसमें ग्रीन भी है. अब आप पूछें जी ग्रीन कैसे आप मुंह पे लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कि वो ग्रीन किस चीज को कवर करेगा. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको, साथ बुकलेट मिलेगी जिसमें आप की सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी ताकि आपको याद रहे, एंड देन आप मुझे मेकअप करके दिखाएंगे ताकि मुझे समझ आए कि आपको कितना आपने सीख लिया है. देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, यू विल बी अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट.
8: नवीन, ये कंसीलर्स क्या होते हैं और स्किन पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और मेकअप में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है?
9: कंसीलर जो नाम आपको बता रहा है कि वो कंसील करता है, छुपाता है.
8: अच्छा.
9: तो बेसिकली इट कंसील्स योर ब्लेमिशेस एंड वट एवर यू नो आपकी स्किन पे कोई ऐसी चीज है जिसको मेकअप में आप नहीं नुमाया. जैसे पिगमेंटेशन कई लोगों को होती है, तो ऑफकोर्स वी हैव टू कंसील दैट ताकि आपकी फ्लॉलेस स्किन लगे. तो उसके लिए बहुत लेयर्स हैं ऑफ मेकअप जो आपको करके अचीव करना है फ्लॉलेस स्किन.
8: बिल्कुल सही. तो कोई ऐसा कंसीलर भी है जो इंसान की खामियों को छुपा दे?
9: मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट,
8: स्टिल वर्किंग ऑन दैट. कीप मी पोस्टेड फॉर दैट. यहाँ पे नंबर है नवीन जी का. आप में से अगर कोई मेकअप सीखने में दिलचस्पी रखता है, आपको मेकअप सीखना है, खुद प्रेजेंटेबल बनना है या दूसरों को बनाना है, सीखने के बाद आप मेकअप की कोई एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, पार्लर खोलना चाहते हैं, मेकअप पार्लर कह लें, ब्यूटी पार्लर कह लें उसको, वो खोलना चाहते हैं, या खुद से घर से काम करना चाहते हैं, पार्टी मेकअप शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप रिमोट मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप नवीन से बात करेंगे। ये है नवीन का नंबर, 6479639603960। ओह थैंक यू वेरी मच, 6479608097 नंबर दोबारा बता रहे हैं, 6479608097 थैंक यू फॉर कंसीलिंग दिस मिस्टेक, बहुत बहुत शुक्रिया,
9: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।

0: कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहरों तुझे सोचते रहते हैं हम, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
5: भाई, मनु कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओदा ता जवाब है नहीं। सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस, विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
7: साहब, हम बहुत सा पैसा बचा सकते हैं। हम कोई भी कारोबार चला रहे हैं तो जिस तरह के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सी ऐसी स्किल्स जनरेट करनी है, या खुद सीखें या अपने स्टाफ को सिखाएं, जिससे कम से कम हमारा मार्केटिंग का बजट कम हो जाए, यानी मार्केट पे या मार्केटिंग पे कम पैसा स्पेंड करना पड़े। उसके लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, कमाल का काम है, और ये है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। आप अपने बोर्डरूम में इस ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप कोई ब्रोकरेज चला रहे हैं, कोई और बिजनेस चला रहे हैं, इंश्योरेंस है, मॉर्गेज है, रियल एस्टेट है, या कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बहुत सा पैसा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, आपका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, तो हमारी टीम आपके प्रमिसेस पे, आपके ऑफिस में, आपके बोर्डरूम में आके आपके मेंबर्स ऑफ स्टाफ को ट्रेन करेगी, और उस ट्रेनिंग में आपको एक्सपर्ट कर दिया जाएगा कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन कम से कम बजट में आपने कैसे चलानी है। हम आपके कॉलीग्स को, आपके को वर्कर्स को डिजिटल मीडिया में, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन में, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट कर देंगे, ताकि वो आपके दफ्तर में बैठ के, आपके ऑफिस में बैठ के सारा काम खुद कर सके। इसे हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का नाम दिया है। वी विल कम टू योर प्लेस, योर ऑफिस, योर प्रमिसेस एंड डिलीवर द ट्रेनिंग देयर। आप फोन कीजिए और ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का इंतज़ाम कीजिए, इसके लिए अरेंजमेंट बनवाइए, अपॉइंटमेंट बनवाइए। वीकडेज में करना चाहते हैं या वीकेंड पे करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप हमारे प्रेमिसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी में आना चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए इसके लिए, 416-303-3639। नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं, 416-303-3639। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पूरे ओंटेरियो में कहीं भी दी जा सकती है। इसका इंतजाम कराना चाहते हैं, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि 5 लोगों पर मुश्तमिल हो आपकी टीम, 5 लोगों से कम नहीं हो सकती ऑन लोकेशन के लिए। और अगर आप हमारी लोकेशन पर आना चाहते हैं तो 3-4 जितने भी हैं आप तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेनिंग आपकी प्रमिसेस पे, आपकी बोर्डरूम में या आपके ऑफिस में हो रही है, तो फिर उसके लिए कम से कम 5 लोगों की टीम का होना जरूरी है। नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 416-303-3639। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: साहब, जो टैक्स हम अदा करते हैं वो कहाँ जाता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? गवर्नमेंट अपनी मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से जहां चाहती है पैसा भेज देती है, चाहे वो वियतनाम है मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां भेज दिए, यूक्रेन है मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां भेज दिए, यहां कनाडा के लोग भूखे परेशान हाल, महंगी ग्रोसरी, ज्यादा से ज्यादा बिल, मोर्टगेज का इंटरेस्ट रेट ज्यादा, बुरा हाल है लोगों का, और हुकूमत क्या कर रही है, पैसा बाहर के देशों में, मुल्कों में भेज रही है, वो पैसा जो आपके टैक्स का पैसा है। इसलिए जरूरी यह है कि गवर्नमेंट अगर आपको कोई बेनिफिट दे रही है, जल्द अज जल्द वो बेनिफिट ले लीजिए। गवर्नमेंट कोई फायदा दे रही है, कोई ग्रांट दे रही है, जल्द अज जल्द ले लीजिए। कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है तो एक मिनट की देर ना करें, वो ग्रांट ले लें, वो लोन ले लें। इसके लिए इंतजाम किया है हमारे बहुत ही अजीज मित्र दोस्त हैं, और इनका ये कहना है कि अगर आपकी साल की आमदनी इनकम 70,000 से कम रही है, आप फैमिली ऑफ फोर हैं, फैमिली ऑफ फाइव हैं, फैमिली ऑफ सिक्स हैं, जितने भी लोग आपकी फैमिली में हैं, आपको $70,000 तक का पैसा मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन भी होगा, उसमें ग्रांट भी होगी, और ग्रांट वो पैसा है जो आपको लौटाना नहीं है, यह आपका पैसा है, आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पैसा कैसे मिलता है ये जानने की कोशिश करेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू जी, सभी को हमारी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये इतना पैसा $70,000 के करीब करीब कैसे मिलता है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू टू गेट दिस ग्रांट?
1: हाँ जी, सो लाइक यूनी ग्लोबल एडवाइजरी हमारी कंपनी का नाम है, 7 years हो गए हैं हमें आपकी सेवा करते हुए, एंड देन इसमें आपका बेनिफिट हाथी जितना है, हमारा चीज जितना है।
0: अच्छा,
1: लेकिन
0: अच्छा।
1: अगर कलयुग में अगर हम अच्छा काम करें तो भी लोगों को शक ही होता है, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि हमें तो आपके साथ भी 1.5-2 साल हो चुके हैं
0: एडवर्टाइज
1: करते टाइम से हो गया, बहुतों का काम बन चुका है जी, सबका ही बन चुका है काम, हजारों का बन चुका है 7 साल में। तो गवर्नमेंट फंडेड एडुकेशन प्रोग्राम्स करें, तालीम हासिल करें, हुकूमत आपको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग देती है, 30,000 to 100,000 की फंडिंग होती है, जिसका आज की डेट में हाफ पैसा इज approximately half पैसा is what non-refundable tax-free grants जो वापस ही नहीं मोड़ना आपने।
0: बिल्कुल सही,
1: तालीम हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, मेरे नहीं अपने अकाउंट में।
0: बिल्कुल सही, पैसा आपके अकाउंट में आएगा और किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, सेफ सिक्योर काम है। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लर्नर्स को भेजा था, उनका काम हुआ, उनको फंडिंग मिली, उनको स्किल मिली, उनको तालीम मिली, उनको इल्म मिला, स्किल भी डेवलप हुई और पैसा भी मिल गया, दोनों काम हो गए। तो इसलिए आप भी फंडिंग ले लीजिए, ग्रांट ले लीजिए, काम आएगी। और आजकल नहीं ली तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं कब क्या चेंज कर दे, तो इसलिए द सूनर द बेटर। ये नंबर मिलाए, मुफ्त का पैसा है, ग्रांट है ये, 437-264-3175 नंबर दोबारा बता रहे हैं, 437-264-3175। सवाल ये पूछना चाहता हूं कि कौन इंटाइटल्ड है ये ग्रांट अप्लाई करने के लिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है?
1: हाँ जी, सो अगर आपका स्टेटस PR सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड मेन थिंग आपकी इनकम कम है, ज्यादा नहीं, कम है, 2024 के नोटिस असेसमेंट पे $70,000 से, तो ही सिर्फ आपको इसका बेनिफिट है। अगर आपका लाइक फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो अप टू 100,000 की फंडिंग उनकी बन जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों फुली ऑनलाइन आसान से कोर्स करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, नो एज लिमिट, हमारे क्लाइंट्स की एज 30 भी और 75 ईयर्स भी है,
0: घर
1: बैठे फुली ऑनलाइन आसान से कोर्सेज कर रहे हैं जी, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, फंडिंग हासिल कर चुके हैं, फंडिंग खर्च भी कर चुके हैं।
0: एक साहब जिनकी उम्र 75 साल है, उनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, शायद आपको इल्म हो इस बात का, आई नो हिम पर्सनली, उनको स्किल भी मिला, उनको पैसा भी मिला, एंड ही इज वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप भी ये ग्रांट लेना चाहते हैं तो ये नंबर मिलाइए, गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा है, ना कोई टैक्स है ना कोई और कहानी, आपको स्किल भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, और वो पैसा जो आपको वापस नहीं करना है, 4372643175। तो आप भी इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, सब करते हैं, तो आपकी क्या फीस रहती है और वो कब क्लाइंट आपको देता है?
1: हाँ जी, देखिए जी, हम इतने तजुर्बा हो गए, मैं काम करते 7 ईयर्स हो गए हैं, हमारी फीस जो है वो ऑनेस्ट है, $199 से $499। शुरू में भी नहीं देनी है आपने, काम होने के बाद 30 से 90 डेज में आपके अकाउंट में फंडिंग आती है, आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस उसके बाद देनी है जी, शुरू में कुछ नहीं देना आपने। और मतलब इसमें आप हमारे पीछे नहीं भाग रहे, हम आपके पीछे भागते हैं फीस लेने के लिए, और आधे लोग देते भी नहीं है।
0: सही,
1: ऐसा मिलेंगे तब भी हमें, हम पैसे बाद में लेते हैं, हमें आराम रहता है। इसलिए कोई चेंज नहीं है जी, इसमें कोई कोई कैच नहीं है, गवर्नमेंट इतनी चीजों में इन्वेस्ट करती है। जैसे मेरा फेवरेट है, गवर्नमेंट ने 965 मिलियन दिया है जेंडर इक्वेलिटी में वियतनाम में। वियतनाम का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वियतनाम में 8.2 मिलियन दिया है कि राइस की फार्मिंग के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए महिलाएं पार्ट लें, का वियतनाम में राइस की खेती में गवर्नमेंट ने 8.2 मिलियन वियतनाम को दिया है।
0: मुझे लगता है इतना पैसा यहाँ लगाया हो तो कितने लोगों को रोजगार मिले, कितने कैनेडियंस काम पे लगे।
1: और गवर्नमेंट का बजट जेंडर इक्वालिटी का कनाडा के बाहर जो खर्च करना है, और खर्च कर चुके 965 मिलियन डॉलर, गवर्नमेंट 4 बिलियन डॉलर यहाँ लगा रही है। लगता है कुछ कैच होगा, नो कैच इन इट, इतने लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं जी। अब 1 अगस्त के बाद रूल चेंज हो रहे हैं, ग्रांट्स बंद, लोन आएगा सिर्फ।
0: बिल्कुल ठीक,
1: अभी एनरोल करें, 2 बैच रह गए हैं अभी, नहीं आप 1 अगस्त को ही आएंगे, तो 2 बैच रह गए हैं। हम भी लाइक अभी पूरा लाइक हमें भी टाइम लगता है फाइल बनाने में, अभी एनरोल करें, बेनिफिट लें, स्किल हासिल करें, तालीम हासिल करें, मुकम्मल अपने काम में फंडिंग हासिल करें। 30 से 100,000 की फंडिंग होती है, जिसका आधा पैसा आज की रेट में हाफ पैसा है नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, टिम होटल पे नहीं बुलाते मिलने के, हम टिम होटल में मिलने के लिए नहीं बुलाते, प्रॉपर ऑफिस है जी,
0: ऑफिस है बिल्कुल,
1: कोई कैच नहीं है।
0: आई हैव विजिटेड दैट ऑफिस सेवरल टाइम्स, मैंने देखा हुआ है इनका ये दफ्तर, बड़ा अच्छा दफ्तर बनाया हुआ है, प्रोफेशनल माहौल है, प्रॉपर पढ़े लिखे माहौल में, पढ़े लिखे तरीके से ये काम करते हैं, कोई हॉच पॉच नहीं है, थोरो प्रोफेशनल है। अभी कॉल कीजिए, बात कीजिए, हो सकता है कि आपकी फैमिली का आने वाले 2-3-4 साल का बजट आपको मिल जाए, आपका किचन आसानी से चल जाए, मोर्गेज आसानी से निकल जाए, आपकी जिंदगी सुख और राहत में बदल जाए। कोई 70,000 की ग्रांट मिल सकती है आपको, 70,000 तक की मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली साइज, कितने बच्चे हैं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो इस ग्रांट के लिए फोन करना है आपको, ये नंबर मिलाएंगे 4372643175। आई रिपीट, 4372643175। नागपाल जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना, या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो तन्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, तो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। उसकी कुर्बत में है क्या बात न जाने मोहसिन, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है।
1: मम्मा, why don't you go to work now?
2: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
3: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
2: क्या वो मदद करेंगे?
3: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
4: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
3: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
4: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
5: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 months एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Don Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Don Platinum, the better grease getter.
9: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
10: क्या आप सुन रहे हैं?
11: क्या आप सुन रहे हैं?
10: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
11: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
10: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
12: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
13: साहब, इस जिंदगी से थोड़ा सा जब हम उखता जाते हैं यहाँ कनाडा में, तो हमारा जी चाहता है कि हम पुरसकून सा थोड़ा सा वक्त गुजारें, जो हमारा अपना वक्त हो, अपना टाइम हो, जिसे हम मी टाइम कहते हैं अपनी जुबान में, तो उसको गुजारने के लिए कभी आप अपना बचपन तलाश करने जाते हैं, कभी आप अपनी जवानी तलाश करने जाते हैं, कभी खोया हुआ कोई इश्क तलाश करना चाहते हैं, और कभी नामालूम सी कोई मोहब्बत तलाश करने आप बैक होम चले जाते हैं। उसके लिए हमेशा आपको तलाश रहती है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपको कम से कम प्राइस में टिकट दे, कम से कम खर्चा हो आपका। ये तो एक एलिमेंट हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप कहीं एयरपोर्ट पे फंस जाएं, उलझ जाएं, कोई परेशानी हो जाए, सामान कम या ज्यादा हो जाए, या एयरपोर्ट स्टाफ के साथ कोई मसला बन जाए, तो कोई हो जिसको आप फौरन से पहले फोन कर सकें। 24/7 इनकी सर्विस है। इनका ये कहना है कि रात के 11 बजे फ़ोन करेंगे तब भी, सुबह 9 बजे फ़ोन करेंगे तब भी, और सपहर में 3 बजे करेंगे तब भी फ़ोन उठाया जाएगा, आपकी मदद होगी, आपकी हेल्प होगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा। 24/7 कस्टमर सर्विस है इनकी, कमाल की। और ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं ऑनलाइन कहीं टिकट करवा ली है, ऑनलाइन कहीं कहीं रिजर्वेशन करा ली है, तो आपको ये सर्विस हासिल नहीं होगी, ये सहूलत हासिल नहीं होगी, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि हर वक्त आपका कोई फोन उठाए। नाम है स्टार लाइट ट्रेवल का, स्टार लाइट ट्रेवल। इनका कहना है कि रेट कम से कम चाहिए। टोरंटो से दिल्ली जाना है आपको, टोरंटो से अमृतसर जाना है आपको, टोरंटो से लाहौर, इस्लामाबाद या कराची जाना है आपको, कहीं भी जाना है, एक फोन कॉल की दूरी पर है, कम से कम प्राइस है। अभी इसी वक्त फोन कीजिए राहुल जी को, 416-745-0000। नंबर दोबारा बता रहे हैं, बात करनी है आपने राहुल भाई से, राहुल भाई से बात करेंगे स्टारलाइट ट्रेवल पे, और ये रहेगा नंबर 416-745-0000। और वसीम भाई वहां पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन राहुल भाई से बात करेंगे आप, राहुल भाई से बात करेंगे। PIA की टिकट कराना चाहते हैं, एयर इंडिया की कराना चाहते हैं, एक ही बात है। और इन्होंने एक क्वीज रखा है, ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टार लाइट ट्रेवल का एड्रेस बताएंगे, स्टार लाइट ट्रेवल का एड्रेस बताएंगे, तो $50 डिस्काउंट का वाउचर मिलेगा, $50 डिस्काउंट का वाउचर मिलेगा अगर आप एड्रेस बताएंगे स्टार लाइट ट्रेवल का। और एड्रेस टेक्स्ट कहां करना है सुन लीजिए, यहां टेक्स्ट कीजिए 416-745-0000। $50 का गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट वाउचर है, अगर आप इनसे टिकट खरीदेंगे, ये टेक्स्ट किया हुआ होगा आपने, तो $50 और छुड़वा पाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस के बावजूद। ये रहा नंबर इनका, इस नंबर पर टेक्स्ट कीजिए स्टार लाइट ट्रेवल का एड्रेस 416-745-0000। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
14: 40 सालों का विश्वास, सफर हर बार खास। स्टारलाइट ट्रेवल्स, आईटा एंटीकोक सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंसी, लेड बाय ट्रेवल एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी, विद 18 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड मेमोरेबल। चीपेस्ट एयर फेयर डील्स हो या ऑल इंक्लूसिव वेकेशंस, कस्टमाइज हॉलीडे पैकेजेस, वीजा असिस्टेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे। सपनों की डेस्टिनेशन हो या फैमिली वेकेशन, स्टारलाइट ट्रेवल बनाए हर सफर टेंशन फ्री और अनफॉरगेटेबल। स्टारलाइट ट्रेवल, सफर सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस।

0: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

0: 93FM
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता रात ईरान ने एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है और अब हमें रद्द अमल देना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम सिफारतकारी की जुबान में बात करने को तरजीह देते हैं, लेकिन हम दीगर जुबानों में भी महारत रखते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ एक अच्छे माहदे तक 2 या 3 रोज में पहुँच जाएंगे। उधर अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने भी कहा कि अमरीका के साथ माहदे के मतन को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है कि इसराइल को पसंद आए या ना आए, हम ईरान के साथ अपने मुल्की मफाद में माहदा करेंगे। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए लेबनान के शहर सोर पर नए हमलों में 8 अफराद को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान के जिले खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। उधर पेशावर में हसन खेल के इलाके में खवारिज से मुकाबले के दौरान FC के 6 जवान मारे गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 5 इंतखाबी हलकों के नतायज रोकने का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि PTI को गिलगित बल्तिस्तान में 15 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। इससे पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मंगल की सुबह भंबर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। कोटली में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस एहलकारों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
3: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 198.25 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ड्रॉफ भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट 198.25 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। मंगल ऑल्टर सॉल्यूशन से हमारे साथ एम सदीक साहब हुआ करते हैं। राइट विंडो फोर्सेस वानवी से आपको मुलाकात कराएंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब को सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ। ख्वाब देखना अच्छी बात है और ख्वाब देखना शायद हमारा मशगला भी बन गया है। हम अजीम मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, ऐसा ख्वाब जो अभी तक अपनी ताबीर की तलाश में है। मुस्तकबिल का तस्वीर हमें हाल से भी बाज़ुकात बेगाना कर देता है। हम अपने पीछे मिल्ली अलमिये छोड़ आए हैं, लेकिन हम हालत समझौता कर लेते हैं। हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते, हम असूल बयान करने वाली कौम हैं। दूसरों को असूल की तालीम देते हैं, मुअल्लिम के लिए अमल ज़रूरी नहीं। हम हकीकत बयान करते हैं और सुनने वाले इसे आगे बयान करते हैं। इस तरह बयान का सिलसिला जारी रहता है और अमल की फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा निज़ाम फ़िक्र इम्पोर्ट होता है। इसी तरह से हमारी वाबस्तगी अलग अलग है। हम में से कुछ लोग रूस नवाज हैं, कुछ अमेरिका नवाज हैं, कुछ चीन नवाज, कुछ अरब नवाज, और फिर हम पर सकाफ़तों की यलगार भी है। हम ख्वाबों में बुलंद परवाज़ हैं, ये अलग बात है कि हमारे गिर्द दायरा जो है वो तंग होता जा रहा है। ये कौम तो गरीब है, लेकिन लोग अमीर हैं। कारें ही कारें, राह चलना दुश्वार है, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा, ख़रीदारी उससे भी ज़्यादा। अजब आलम है। खतरात बयान हो रहे हैं, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं है। बयान करने वाले भी अपने आलीशान मकान की तामीर करते जा रहे हैं। जहाँ अल्फाज अपने मफाहीम बदल चुके हों, वहाँ अपने अहद के बारे में क्या कहा जा सकता है। हमारा अहद अजब अहद है, इसमें क्या नहीं हो रहा। जहाँ तज़ादात का दौर है, इंसान के बाहर तजाद, खुद इंसान ही मजमूए इज़्दाद नज़र आता है। आज का इंसान हम वक्त मसरूफ़ है, उसके पास फुर्सत नहीं है, दौड़ता जा रहा है। उसको किसी एक नामालूम मंजिल की तरफ गुमनाम सफ़र ने मसरूफ़ कर रखा है। वो सब कुछ जानने का दावा तो करता है, दावे का मफहूम नहीं समझता। वो यही समझता है कि बस चल रहा है, और यही शायद उसकी कम इल्मी का सबूत है। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। Pride of Mississauga, Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection, Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088, it's 905-268-0088, Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: अपने मकान की next month closing है? कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ हाँ, Brampton TV and appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range hood, microwave, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी।
0: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए, अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki guarantee hamari.

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. 447-321-7444।
2: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए। 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
3: जी हाँ, 416-671-0577 ऑल द सॉल्यूशन पे एम सिद्दीक साहब के रابطے के नंबर है। खुदा न खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हों, बिल्कुल परेशान ना हो, अपने कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, बाकी आसान एक साथ बनवा देंगे और बड़ा अच्छा फीडबैक हमें मिलता है। अगर किसी किस्म की परेशानी है, आप इनसे रابطہ ज़रूर कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम अशरफ भाई, कैसे हैं?
3: बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कर्ज के हवाले से बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में रहती हैं, वो सीरियस नहीं लेते हैं इसको जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, मतलब पेमेंट वालों की तनख्वाहें जो हैं गार्निश होना शुरू हो जाएं, आम लोगों को जो हैं वो नोटिसेज इस हद तक ना आ जाएं कि उनके लिए मसाइल बन जाएं। तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है कि ये इंडिकेशंस क्या होती हैं कि भाई अब मामला जो है वो आपके हाथ से निकलने वाला है और आपसे रब्ता कर लें?
4: भाई मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि वो नौबत आना ही ना दें कि आपका केस कलेक्शन में जाए। वैसे मैं तो कहता हूँ कि ये ना देखें कि कर्जा कितना है, ये देखें आप उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 महीने से मिनिमम पेमेंट ही कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। और जितना जल्दी आप इस ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपका फायदा है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मेरे पास उस वक्त आते हैं या कॉल करते हैं जब उनका बिल्कुल सारे क्रेडिट कार्ड भर चुके होते हैं, डीप डेट में होते हैं, काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं, उस वक्त कॉल करते हैं। तो आप उस टाइम का वेट ना करें कि सारे क्रेडिट कार्ड भर जाएं तब ऑप्शन एक्सप्लोर करें। पहले ही अगर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब ना हो, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके आपका मसला हल कर दें हम।
3: 416-671-0577। एक और मिसकंसेप्शन लोगों में है, उनको ये नहीं कि कौन से कर्ज माफ हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अब बाज़ुकात लोग मॉर्गेज है, कार की लीज है, वो समझते हैं शायद ये भी माफ हो जाएगी, लेकिन ये तो ऐसे डेट है जो माफ नहीं हो सकते। तो कौन से कर्ज हैं जो माफ करवाए जा सकते हैं और कौन से नहीं होते?
4: जितने भी अनसिक्योर्ड कर्जे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, पेडे लोन्स या इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है, बिजनेस का जीएसटी, पेरोल, वे सब्सिडी, या कोई अगर गाड़ी का लोन है लेकिन गाड़ी आपने वापस करनी है, नहीं रखना चाहते तो उस पर जो शॉर्टफॉल आएगी वो अनसिक्योर्ड हो जाती है। इस तरह घर अगर आपने नहीं रखना, वापस करना है घर, तो जो शॉर्टफॉल आएगी उस पर वो भी अनसिक्योर्ड हो जाएगी। लेकिन घर अगर रखेंगे तो उसकी मार्केज बिल्कुल पे करना होगी, एज इट इज कोई रिलीफ नहीं मिलता। गाड़ी अगर रखेंगे तो उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। बाकी अनसिक्योर्ड कर्जे चाहे वो सीआरए के साथ हों, किसी बैंक के साथ हों, वो सारे सेटल हो सकते हैं।
3: अच्छा, सेटल होते हैं क्या, मतलब तरीकेकार क्या है, मतलब 1% तक जो है कर्ज माफ हो जाता है और जो बच जाता है उसकी किस्तें बन जाती हैं?
4: कई ऑप्शन अवेलेबल हैं और परसेंटेज तो कोई नहीं इसकी, किसी का 100% उसको सिर्फ इंटरेस्ट ही फ्रीज होता है उसका, बाकी माफ करना पड़ता है। कुछ का 50% माफ होता है, 70%-80% तक माफ होता है, और कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको मतलब इंटरेस्ट लो करके हम उसको सेटल कर देते हैं।
3: ठीक हो गया। 416-671-0577। अच्छा, बाकी तो आपने सारी बैंक का लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन और बाकी बातें कर दी। अब मुख्तलिफ लोगों के कुछ एसेट्स हैं, मतलब RRSPs हैं, RESPs हैं, वो भी बच जाती हैं?
4: जी बिल्कुल, जितने भी चाहे RRSP है, RESP है, TFSA है, स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह या घर हैं, ये सारे एसेट्स को हम लीगल तरीके से सेव करते हुए हम डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं, कुछ लूज नहीं करते, सब कुछ एज इट इज आपके पास रहता है।
3: 416-671-0577 से देखिए आपके रास्ते का नंबर। जी सब, कितना टाइम लगता है आपसे कोई कॉन्टेक्ट करे आज, और उसके बाद आप एक तो ये बताइए कि फर्स्ट जो आपके साथ मीटिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या उसमें तय हो जाता है कि ये आपको ये मतलब आप उनको ऑप्शन बता सकते हैं, ये ऑप्शन हैं किसके ऊपर आपने जाना है, और उसी वक्त फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड हो जाता है?
4: जी बिल्कुल रशीद भाई, पहली मीटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा केस इन डिटेल रिव्यू करके क्लाइंट को बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके लिए, कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा, इस ऑप्शन में कितना कर्जा कोई माफ होगा या नहीं होगा, कितनी मंथली पेमेंट बनेगी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, ये सारी चीजें पहली मीटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स में मैं क्लाइंट्स को बता देता हूँ। फिर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो प्रोसीड करते हैं, किसी की अगर गार्निशमेंट हो रही होती है तो हमारे पास इमरजेंसी फाइनेंशियल रूम मौजूद है, सेम डे या नेक्स्ट डे हम केस फाइल करके इमीडिएटली उनकी गार्निशमेंट स्टॉप करवा देते हैं। अगर कोई रेगुलर केस होता है तो उसपे अब डिपेंड करता है कितने क्रेडिटर्स हैं, कौन सा ऑप्शन वो अडॉप्ट करते हैं, तो उसके मुताबिक किसी पे एक वीक में सेटल होता है, दो वीक भी लगते हैं, दो महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन है और उनके क्रेडिटर्स कितने हैं।
3: सही, 416-671-0577 स्टूडियोज में राबते का नंबर है। अच्छा सिद्दीक साहब, इसके अलावा एक और बाज़ का मसला रहता है जो लोग बिल्स वगैरह जो हैं वो बाज़ का लेट पेमेंट्स वगैरह हो जाते, वो कितना इफेक्ट होता है आपके क्रेडिट पे या इन मामलों में?
4: जो भाई अगर आपकी पेमेंट्स डिले हों तो ज़ाहिर है वो क्रेडिट स्कोर आपका नीचे आता है। जो रेगुलर पेमेंट है मैं तो कहता हूँ उसको प्री अथॉराइज कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई दफा बंदा भूल जाता है और एक पेमेंट मिस करने से काफी ज्यादा 40-50 पॉइंट तो नीचे आ ही जाते हैं एक पॉइंट अगर एक अच्छा। पेमेंट मिस करते हैं तो।
3: और मतलब आप अपडेट रहे तो फिर क्रेडिट ठीक रहता है और तमाम चीजें ठीक रहती हैं। ठीक
4: जी बिल्कुल, और 30% से कम यूज रखें, कम रखें यूटिलाइजेशन कार्ड पे, तो फिर आपका स्कोर नीचे नहीं आएगा।
3: ठीक,
4: 30% से ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा आपका स्कोर नीचे आना शुरू होगा।
3: कुछ और ऐड करना चाहें आप इन दिन?
4: पर यही कहूंगा अर्षद भाई कि अगर आप एक कर्जा है मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं तो इसको इग्नोर ना करें, अपना पैसा इंटरेस्ट में जाया ना करें, कमीशन लें और उसके बाद डिसाइड करें। एक चीज की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी, अगर आपको जरूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊंगा रिलीफ लो, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दूंगा। दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो इस चीज की भी मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, और अगर इसमें आपका क्रेडिट खराब होता है तो हम आपका क्रेडिट बिल्ड करने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे। नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
3: 416-671-0577 बहुत शुक्रिया आपका सदीक साहब, अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
4: इंशाल्लाह
3: खुदा हाफिज़। नंबर नोट कीजिए 416-671-0577 416-671-0577। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM हमारे स्टूडियोज में रब्ते का नंबर 416-593-0003। आज थोड़ी ही देर मतलब आज ही की बात है जब सदर ट्रंप कह रहे थे कि बस अब मामला ठीक हो गए हैं, काफ़ी हद तक बेहतर, दो दिन में जो है वो जो है सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं और दो दिन में माहिदा जो है हो जाएगा। उसके बाद फिर हमला हो गया आज। आज एक हेलीकॉप्टर गिरा अमेरिका का जिसमें दो पायलट थे वो महफूज रहे, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम अपने दिफा में जो हैं वो हमला कर रहे हैं, और सैटकॉम ने उसकी तस्दीक भी कर दी। और ईरान का कहना है कि हेलीकॉप्टर हमले से उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं है, लेकिन अमरीकी फौज के अब ईरान के खिलाफ दिफाई हमले शुरू हो गए हैं और कुछ जगहों पर जो है वो हमले किए भी गए हैं। अब उसमें ईरान अपने तई एक बात कर रहा है और अमरीका अपने तई एक बात कर रहा है। इससे पहले इसराइल और ईरान ने भी एक दूसरे पर जो है वो हमले किए थे और जिसके बाद सीज़ फायर हो गया था, और आज अब ये मामला है, और शायद इसके बाद वो कहेंगे दिफाई तौर पर हमने जो हमले करने थे कर लिए और उसके बाद फिर मामला वैसे हो जाए। तो ये मामला जो है वो हल होता नज़र आ नहीं रहा, कोई ना कोई मसला रोज़ ऐसा किस किस्म का हो जाता है कि फिर कोई ना कोई मामला रहता है। और फिर ईरान में हमले से पहले ट्रंप का इसराइली वज़ीर से भी रबते की जो है वो इत्तला हैं। तो लेट्स सी, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, और वक्त हो चला है आपके लिए चलने का कैनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती हैं वानी।
2: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
5: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मी वानी विद लोकल अपडेट। अ ओपीबी ऑफिसर किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन नॉर्दर्न ओंटारियो। Air Canada pilot flew for decades without proper license like a movie star. 7 more suspects identified in shooting death of Anthony Taylor at Rexdale TCH building. York Regional Police are issuing a renewed public warning after two recent cases in Markham and Richmond Hill revealed suspects using a glue-based technique to scoot condominiums unit before committing break and enter. The federal government is extending an amnesty for owners of banned firearms while a legal battle plays out of the Supreme Court of Canada. Ottawa's new Digital Safety Act expected to include under 16 social media ban. Toronto Police says concerns over crowd size, illegally parked vehicle led to early Dewey's Fest shutdown. Prime Minister Mark Carney and MPs raise pride flag on Parliament Hills. Prime Minister Mark Carney says it's a good news that the Gordie Howe International Bridge between Windsor, Ontario and Detroit will get its official opening at the end of the week. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए वानी पेश कर रही थी। आप सुन रहे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से खबर देने के मामले पर एनसीसीआई ने 3 साफियों को तलब किया है। एनसीसीआई की जानिब से तजियाकार इरशाद भट्टी, एंकर सलमान हैदर और रिपोर्टर अनवर समरा को भी नोटिस जारी करते हुए 10 जून को तलब कर लिया गया है। इससे पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करते बयान में कहा गया था कि वीलॉगर इरशाद भट्टी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालिक अपने वीलॉग में लगाए गए इल्जाम यकसर बेबुनियाद, मनघड़त और झूठ पर मबनी है। आवाम को गुमराह करने और बगैर तस्दीक के मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना कानूनी जुर्म है और पाकिस्तान के पीका एक्ट और कानून हितक इज्जत के तहत किसी भी शहरी या सरकारी उद्दार की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जाली खबरें फैलाना और बगैर सबूत इल्जामात लगाना कानूनी जुर्म है। मुर्तकब शख्स सख्त सजा और भारी जुर्माने का सामना करता है। हुकूमत पंजाब इस प्रोपेगेंडे को अक्सर मुस्तरद करती है। इरशाद भट्टी को अपने वीलॉग में किए गए दावों और इल्जाम को अदालत में साबित करना होगा, जिसके लिए हुकूमत पंजाब कानूनी चारावजे का हक महफूज रखती है। भट्टी साहब नाकद हैं, इस हुकूमत की काफी हद तक तनकीद करते हैं, बाज़ बातें उनकी दुरुस्त भी होती हैं। अब इसका किस तरह से अदालत में दिफा करेंगे, या शायद हो सकता है कि अभी तलब किया गया उसके बाद ही मामला दुरुस्त हो जाए, लेकिन अगर हुआ तो फिर हो सकता है कि इनके लिए कुछ मुश्किलात आने वाले दिनों में हो सकती हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। वक्त हो चला आपको लिए चलने का आज के शायरी के सेगमेंट की तरफ।
6: कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को। मेरी लहत पे पतंगों का खून होता है, हुजूर शमा न लाया करें जलाने को। सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। तबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो चांदनी शब में उन्हें लाने को। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, ना जाने कैसे खबर हो गई जमाने को।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861।
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर और उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Apne khush ke lamhat ko yaadgar banayein. Icon Event Space mein shaadi, mehndi, reception, birthday parties, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374।
1: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ, या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
3: 416-206-3200 राइट विंडो फोर्स के रबते के नंबर है। आपके विंडोज़ और डोर्स अगर पुराने हो गए हैं और लीक कर रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और इसके साथ साथ आपके बिल के लिए भी अच्छा नहीं है। सर्दी है तो सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। एसी ज़्यादा चलेगा, चलता ही रहेगा लेकिन ठंडा नहीं करेगा। फर्नेस जो है सर्दियों में चलती रहेगी लेकिन घर गर्म नहीं होगा। तो ये मौका है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल डील्स आपके लिए कराए हैं राइट विंडो फोर्स से। हमारे साथ सुबानु जी मौजूद हुआ करते हैं, नंबर नोट कीजिए 416-206-3200। खुश आमदीद कहेंगे। सुबानु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान।
4: गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बड़ी साहब,
3: बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि स्पेशल ऑप्शन है, आजकल के जिस किस्म के मामलात हैं उसमें पैसे तो है नहीं, कोई ऐसा भी तरीका है कि जीरो डाउन पे भी आप कुछ मदद कर दें लोगों की जो ये चेंज करवाना चाहें डोर्स या विंडोज?
4: बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, जैसे हालात चल रहे हैं तो आई नो सबके बजट टाइट है, तो हम एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आए हैं जो टोरंटो टीवी के लिए। बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी विंडो चेंज कराना चाह रहा है जिसकी बहुत हालत खराब हो चुकी है विंडो की और सर्दियों में उन्होंने काफी टफ टाइम देखा है,
3: जी जी,
4: तो बिना किसी पेमेंट दिए 0%, मतलब आप कोई डाउन पेमेंट मत दीजिए, हम डे वन से आपकी एक किस्त बांध देंगे जो आपके लिए अगले 5 से 10 साल तक चलती रहेगी।
3: अच्छा।
4: और इसमें सबसे बड़ी खूबी, जी सबसे बड़ी खूबी यह है भट्टी साहब कि आप इसको जब मर्जी धीरे धीरे करके जल्दी भी पे ऑफ कर सकते हैं।
3: अच्छा।
4: ये ओपन है,
3: ठीक है, जब पैसे आ जाएं सारे लमसम भी पे कर दें तो वो जाहिर है वो सिलसिला। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। तो फर्ज कर लीजिए किसी का घर है जिसमें 20-25 विंडोज हैं, तो क्या इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाती, कम बनती है?
4: सो देखिए, टाउन हाउस टिपिकली जो होता है सर उसकी बनती है तकरीबन 70 से लेके $85 के बीच में।
3: अच्छा,
4: जो पैच हाउस है वो पड़ रहा है अराउंड 90 से $110 पर मंथ।
3: ठीक है।
4: और डिटैच घर तो सर डिपेंड करता है, क्योंकि डिटैच घर में किसी में 20 विंडो भी होती है, किसी 30 भी होती है, तो डिटैच का तो
3: डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, जो आप एस्टिमेट देते हैं वो आप विजिट करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आप तमाम डिटेल बता देते हैं उसी वक्त जो है डायमेंशन वगैरह लेके?
4: बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब। सो अगर जैसे हम जाते हैं और कस्टमर अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम उसी समय, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है टैबलेट पे, वो हम रन करके उनको बता देते हैं कि जी ये आपका एक रफ एस्टिमेट है और इसके मुताबिक आपकी $70 $80 महीने की या $90 जैसा भी होता है वो आपकी किस्त बनेगी। और मैं आपको जो ये अमाउंट बता रहा हूँ 70 80 90, ये पर मंथ फॉर एंटायर हाउस है, मतलब
3: पर विंडो या डोर नहीं है, टोटल विंडोज और डोर की है। ठीक है,
4: हाँ जी, पूरे घर की, मतलब आप इतने पैसों में आप मतलब मंथली में आप करा सकते हैं। आजकल मोबाइल के प्लान $50-$60।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं। 416-206-3200 पे आप मजीद मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, इनकी वारंटी वगैरह क्या है, कितने अरसे के लिए वारंटी होती है इनकी?
4: तो इनकी वारंटी जो है लाइफ टाइम होती है सर।
3: अच्छा,
4: इसमें कोई ऐसा, आपको जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि जी हम लॉक पे दे रहे हैं, नहीं ग्लास पे नहीं है, हमारा फ्रेम पे नहीं, ना, एवरीथिंग कवर्ड फॉर लाइफ टाइम, 25 साल की वारंटी।
3: सही है, फिर जाहिर है जब वारंटी है तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, क्वालिटी होगी तो वारंटी दी जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो है, अच्छा एक चीज हम एड में भी बताते हैं, एनर्जी स्टार, और एनर्जी स्टार जो है उसका क्या फायदा है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सारी चीजें?
4: सो एनर्जी स्टार विंडोज जो होती है वो नेचुरल रिसोर्स कैनेडा से अप्रूव्ड विंडोज होती हैं, जो -35 -40 तक टेम्परेचर ले जाती है।
3: अच्छा।
4: और प्लस में भी हेल्प करती है। इस समय लोगों को प्लस की ज्यादा जरूरत है, जिस हिसाब से शदीद गर्मी पड़ रही है और आगे और पड़ने के आसार।
3: जी हाँ बिल्कुल, +40 में ह्यूमिडिटी के साथ इस वीक भी बल्कि चांसेस हैं गर्मी के। अच्छा जनाब, आप कॉल करके 416-206-3200 पे रابطہ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ लोग, जी जी आप बताएं कुछ कह रहे थे।
4: तो मैं ये कह रहा था कि बड़ी साहब की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अगर आपकी बिल्कुल ही मतलब विंडोज चेंज है और गिरने को तैयार है, मतलब कई मैं ऐसे घरों में जाता हूँ जहाँ ऐसी हालत है बट रियली वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो उस केस में तो हम डेफिनेटली अप्रूव करा के देंगे फाइनेंस।
3: ओके, ऑलराइट, अच्छा ठीक है। और फाइनेंस जो है वो फाइनेंस हो जाता है और जिसमें किस्तें बन जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये भी लोग होता है कि भी एक साल के अंदर किस्तें बना लें, वो भी हो जाता है, और कुछ डाउन पेमेंट दे दी उसके बाद अपनी मर्जी से जो है कस्टमाइज कर लिया।
4: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें ना मैं बहुत मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप कहते हैं कि जी हमारा बजट जो है इतनी ब्यूटी है उसकी जो फाइनेंस की ऑप्शन है, आप कहते हैं कि हमारे को $70 से ज्यादा नहीं देना है, हमें 90 से ज्यादा नहीं देना, तो हम आपका टेन्योर वैसे कर देते हैं कि आप आराम से पे करें।
3: वेरी राइट, 416-206-3200 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और ऐड करें आप सवान जी, कुछ और कहना चाहें हमारे सुनने वालों?
4: बस मैं यही कहना चाहूंगा बटी साहब कि अगर जरूरत है तो इमीडिएटली कॉल करें, क्योंकि ये जो फाइनेंस वाली स्कीम है ना सर, ये बहुत लंबा नहीं चलती है।
3: अच्छा,
4: और अभी तो बैंक ऑफ कनाडा ने हमें काफी रिस्पाइट दे रखी है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ऊपर जाने के चांसेस है।
3: बिल्कुल ठीक, ऑलराइट।
4: सो जी, सो अभी फायदा उठाएं और जरूर अपनी विंडोज और डोर्स चेंज कराएं। 416-206-3200
3: पे अभी कॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच मानु जी, नेक्स्ट प्रोग्राम आपसे फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नंबर नोट कीजिए, राइट विंडो फोर्स 416-206-3200। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। मसूद राणा ने क्या कमाल के गाने जनाब गाए हैं, और जून 9th जो है वो उनकी तारीख पैदाइश है। जून 9, 1938 में मीरपुर खास में जो है उनकी पैदाइश हुई थी, और 4 अक्टूबर 1995 को उनका जो है इंतकाल हो गया था। और वो पाकिस्तानी फिल्म के प्लेबैक सिंगर्स में उनका कमाल का नाम है। और अच्छा, कहीं इनकी तारीख पैदाइश 6 अगस्त भी लिखी हुई है। और 1962 में इन्होंने करियर, सिंगिंग करियर का जो आगाज़ किया था, वरना टॉप मेल सिंगर्स हैं उर्दू और पंजाबी में, और 3 decades तक जो हैं वो राज करते रहे हैं गायकी के मैदान में। और रिकॉर्ड है उनका सिंगिंग के लिए, ओवर 300 फिल्म सॉन्ग जो हैं इन्होंने उर्दू और पंजाबी में गाए हैं, और इनके साथ शेयर्ड इनका है अहमद रुश्दी और नूर जहाँ के साथ। और इनके कमाल के गाने थे, कुछ गाने मैंने जहन में आ रहे थे और मैं अभी एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए जो है पेश भी करूँगा। तांगे वाला खैर मांगता है इनका बहुत पॉपुलर सॉन्ग था, और तेरी याद आ गई, झूम है दिल मेरे, हाले दिल आज हम सुनाएंगे, और इसके अलावा कल भी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिल गए, शायद हमराई फिल्म का गाना था। अच्छा, हमराई फिल्म ऐसी है जिसमें एक नाबीना था और एक जो है वो लंगड़ा था, चल नहीं सकता, मतलब हैंडीकैप थे इस हवाले से, तो बच्चों की फिल्म थी, तो उसको हमारे ज़माने में मतलब बहुत छोटे होते थे हम, जब हमारे पेरेंट्स हमें लेके गए थे, वो दो फिल्में हुआ करती थी, हमराही और एक अल्लाह अकबर, ये पेरेंट्स है ख़ुद बच्चों को जो है सिनेमा घर में ले जाके जो है वो दिखा करते थे। और इसके अलावा ये वादा करो कि इसके मोहब्बत करेंगे, झूम है दिल मेरा, तो बड़े ज़बरदस्त नगमे, एक इनका पंजाबी रंगमा बहुत पॉपुलर हुआ था, सजना ने बुआ की चिक तान ली। आइए सुनते हैं।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374.
3: Toronto, तैयार हो जाओ। सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फैमिली एंटरटेनमेंट नाइट इनाम घर कनाडा 28 जून को, जिसमें शामिल है मजेदार डिनर, दिलचस्प गेम, बड़े इनाम और लाइव कॉन्सर्ट। टिकट सिर्फ $25। 10 जून के बाद $39। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 416-710-6777। ई ट्रांसफर inamgharcanada@gmail.com।
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा।